0: You're listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-0057-1009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खलते हुए जी
7: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
7: ए ए एमओटी वाले हैं किधर?
8: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454.

0: Our voice, our choice, our radio station, Sheffield's Link FM. Link FM.
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था, तुम भी।
4: कोक स्टूडियो सीजन 10।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: 96.7 Link FM.

0: मिलते हैं ब्रेक के दूसरे से, फिर इस बात को आगे रखते हैं।
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
8: ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਈ ਗਏ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਨਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੇ ਤੱਕੋ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਸਾਲਗਿਰਾ, ਮਾਣੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਪਰ ਬਣਵਾਈ ਸਕਣੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ, ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਨਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਆਰਡਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07939 737 547
9: या 07784850934।
10: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
11: Hello everyone, my name is Leo.
12: My name is Azir Iqbal.
13: This is Dr. Shah Nawaz.
14: This is Councillor Shafak Mohammed.
15: My name is Ibra Hussain.
16: This is Aftab Behman.
17: This is Ibrit Tabassum.
18: I'm Chris Lewis.
19: My name is Javed Rashid.
7: My name is Mohammed Maru.
6: This is Sohail Mumtaz. You're listening to Link FM 96.7, Linking Communities.
0: लीडिंग रोल अदा करना है इस माशरे की, मैं रीढ़ की हड्डी का, इस कौम में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करना है। इन पर जिस्म का पूरा ढांचा इस रीढ़ की हड्डी पर खड़ा होता है, वरना तो हर चीज़ कोलैप्स हो जाएगी। लिहाजा आज सोचना यह है कि ये बच्चे जो हैं आज ये दीन इस्लाम को सही सही समझेंगे, इनकी तरबियत सही नहीं होगी तो फिर ये आगे अपनी जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा कैसे करेंगे। जिस तरीके से एक क्रिकेट टीम है, उसकी सही ट्रेनिंग नहीं अगर होगी, सही तरबियत नहीं होगी, सही प्रैक्टिस नहीं होगी हर लिहाज से, तो मैं समझता हूँ उसकी कारकर्दगी, उसने क्या कारकर्दगी दिखाना जी मैदान के अंदर, जिस तरीके से हमारी टीम कभी कभार इसी तरीके से होता है। तो कहने का मकसद यह है कि आज जो है वो हमने इस, हर आदमी इस दौर से गुजर रहा है, और जो हमारे बच्चे जवान हैं वो भी यकीनन किसी वक्त उन्होंने

प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम और हर रोज की तरह आज दोबारा कवाली प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आपको पता है कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और इस प्रोग्राम में आपके लिए मुख्तलिफ कवालीज जो है वो आपके लिए पेश की जाती हैं और उम्मीद है कि आप इस शो को एंजॉय कर रहे होंगे। और चलते हैं, आज इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत कवाली से।

0: आपके लिए हाजिर है। आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
1: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Saim Mudassir.
10: This is Rahan.
11: My name is Rizwan Ishwak.
12: My name is Asham.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.
5: Community radio for Sheffield.
15: This is Link FM.

गेसु जे गेसु सुभे जे सुभे शामे जे शामे लोहे जमीनश सुभे तजल्ला रूए मुबीनश माहे तमामे अजजश में लर्जा लर्जा दो आलम

नियत तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है, तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है।

0: दुनिया आपसे एक बात कहनी है, आपसे एक बात कहनी है।
1: छोड़िए, खैर कोई बात नहीं।

दिलकश मंजर होता है, क्या दिलकश रातें होती हैं जब उनका तसव्वुर होता है और चांद से बातें होती हैं। हम होते हैं, वो होते हैं,

सरवत नहीं मांगता, मेरे साथी में दौलत नहीं मांगता, ताजो तख्तो हुकूमत नहीं मांगता, तीनों दुनिया की सरवत नहीं मांगता, मेरे साथी में दौलत नहीं मांगता, बल्कि साथी साथी मेरा एक काम कर।

सोच रहा हूँ, आए दर्दिश अय्याम मैं कुछ सोच रहा हूँ। साथी तुझे कुछ थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, सागर को जरा थाम मैं कुछ सोच रहा हूँ। कि कल रात मैं कदीम अजब हादसा हुआ,

सतस्त हाल है, दुनिया के भी सताए हैं। सकस्त हाल है, दुनिया के भी सताए हैं। तेरे सवाल का यारब जवाब देते हैं, बरोज हश्र है,

तौबा से मुझे जिद है, तौबा न करूंगा क्यों। तौबा हजार बार करी करके तोड़ दी,

0: Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: तुसा की परेशान खलते हुए जी
2: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने कोई कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत तला जवाब सर्विस
2: ए ए एमओटी वाले है किधर
3: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: Welcome back, khushamadeed, tamam sunne wale jo is waqt subah savere ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कवाली स्पेशल और कवाली स्पेशल में आपको फिर एक बार खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद और सिलसिला जारी रखते हैं और इन्जॉय किया होगा आपने जो पहला हिस्सा था दूसरा हिस्सा भी और अब मज़ीद जो है वो आपको कलाम सुनाते हैं अब चलते हैं अगली कवाली की तरफ और इन्जॉय कीजिए

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: 96.7 Link FM.
16: Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम.

सोचेंगे कि ये एकदम से कहाँ गायब हो गई है बीबी। तो ये बीबी यहीं पे बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह सलामत रखे हमारी रेडियो की टीम को, जो हमें माशाल्लाह स्पेशली मैं अपने हवाले से कहूँगी कि एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में बहुत हमारे साथ ममदो मावन रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका साथ जो है हमेशा की तरह बड़ा दिलकश है जी। तो बैक टू स्क्वायर हम आ गए हैं तो स्पेशली क्रेडिट इनको जाता है जी, हमारी रेडियो की टीम को और फिर आपको जी। और ये कैसे हो सकता है कि आयशा अख्तर जो है वो इस स्टूडियो से कहीं जाए। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि मौला करीम तेरे एहसानात हैं मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, उनमें से एक एहसान ये भी है, इसको अल्लाह करीम ऐसे ही जारी है सारी।

खूबसूरत तो अल्लाह ताला से उम्मीद है रहम की, करम की। तो ये अल्लाह पाक से हम करम की इस वक्त इस कलाम में करम की भीख मांगते हैं जी।

के मौला, हम आजमाइशों के भी नहीं काबिल। अल्लाह हमारे ऊपर से आजमाइशें खत्म कर ले, बिलखुसूस औलाद की तरफ से अल्लाह, किसी भी किस्म की या अल्लाह मालो जान की तरफ से अल्लाह, हर आजमाइश से हमें बरी कर दे। अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमतों का अल्लाह करीम वासे तू वसी रिज़क इन अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। मौला इन अल्लाह गफूर रहीम, इन अल्लाह गफूर रहीम, इन अल्लाह गफूर रहीम। मौला तू खुद वादा फरमाता है तू गफूर रहीम, माफ़ करने वाला है, अफ़्व दरगुज़र करने वाला है, रहम करने वाला है। मौला हम पे रहम कर दे, हमारे ऊपर अपनी रहमतों के साए कर दे। मौला मौला हम भूले भटकों को सिराते मुस्तकीम पर चला, हमारी आल औलाद को अल्लाह खैरात डाल दे हमारी झोली में। मौला खैरात डाल दे। मौला तू सखी है, तू करीम रहमान है, रहीम है। अल्लाह या करीम अल्लाह तुझसे मांगते हैं, तेरी रहमत मांगते हैं। मौला जालमों के जुल्म से बचा, हासदीन के हसद से बचा, बुरी नज़र से बचा। या करीम अल्लाह, या करीम अल्लाह तू बुलंदियों का मालिक है, तू गफूर रहीम है। मौला हमारे दिलों को या करीम अल्लाह अपनी मोहब्बत से, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, और या अल्लाह मौला पैतन पाक की मोहब्बत से, या मेरे पाक मौला करीम मीरा गौस पाक की मोहब्बत से अल्लाह, अपने मुकर्रबीन की मोहब्बत से भर दे। मौला मौला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या करीम अल्लाह हमारे ईमान की भी, हमारी आल औलाद के, हम सब के ईमान की हफाजत भी फरमा, और खात्मा बिल ईमान करी या अल्लाह, खात्मा बिल ईमान करी। मौला मौला करीम तुझसे खैर मांगते हैं, भलाई मांगते हैं, आफियत मांगते हैं। मौला तू करीम अल्लाह, करम कर दे, रहम कर दे, दरगुजर कर दे, माफ़ कर दे। मौला माफ़ कर दे। मौला मौला माफ़ कर दे, तू माफ़ करने को पसंद करता है। अल्लाह करीम हमें माफ़ कर दे या करीम अल्लाह, माफ़ कर दे, रहम कर दे। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन।

जी मौजूद सामीन इकराम, देखते देखते प्रोग्राम का इख्तिताम भी आ पहुंचा और ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आज की महफिल अल्लाह करीम हमसे ये काविशें और जो भी हमने पढ़ा और जो भी अल्लाह ताला के लिए हमने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए यहाँ पे एहतमाम किया, दरूदो सलाम का भी और तिलावते कुरान पाक का, और हमारी दुआएं अल्लाह करीम अपनी बारगाह अकदस में कबूल व मंजूर अता फरमाए। कोई कमी, कोई कजी, कोई अल्लाह ताला हमसे कोई कोताही हो गई तो अल्लाह ताला हमें अपने करम फजल से माफ़ फरमा दे, आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। जी मौजूद सामईन इकराम, हमारी वेबसाइट है bradfordnationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। और इस वक्त ये बहुत ही खूबसूरत दुआया कलमात हैं, सुनते हैं और फिर इसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो अभी ये कलाम जो है बहुत खूबसूरत दुआ है, तो आइए ये दुआ बड़े एहतमाम से सुनने की सआदत हासिल करते हैं।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: Mama's going to fetch the milk, fetch the milk, fetch the milk. Mama's going to fetch the milk, she's going to get the cow.
1: सभी कराम अभी आप समाप्त फरमाएंगे सूरा अल कैफ और उसके बाद दर्स होगा जमालुल कुरान जो के पेश करेंगे शेख आजम मुजाहिद।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

0: You are listening to Link FM.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तिखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7। बहुत मजा है सीने।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: तो सबका

0: This is Ahmad Hussain and you're listening to Link FM.
1: जहां दिल मिलते हैं, जहां बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल।
2: जहां बातें बनते हैं, वही है Link FM। दिल से आपके साथ।
3: Link FM Sheffield।

0: सारी दुनिया इस वक्त शक पर है
1: जी।
0: और जो कुरान समझते हैं वो यकीन पे है
1: जी जी।
0: और तो इस हवाले से वो इस पे लोग आए और ये समझे कि वो इसमें क्या उनके लिए है, और ये तभी होगा कि हम हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, हम अच्छे नेबर हों, कहीं भी हमारी इन्वॉल्वमेंट है, हमारे अखलाक अच्छे हों, तो उससे चुआ लोग असर लेंगे और इस तरफ आएंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे। और यहाँ बरतानिया का माशरा बहुत अच्छा है, अल्लाह ने इनमें बहुत खूबियाँ रखी है यहाँ के लोगों में, और ये समझदार भी हैं, ये पढ़ते भी हैं, इनको रिसर्च की भी जो है बहुत ज्यादा जस्तो रहती है
1: जी जी।
0: और इस हवाले से आप देखते हैं कि जब लोग पढ़ते हैं इस पे तो वो बहुत ज्यादा इस्लाम से मुतासर होते हैं
1: जी जी।
0: आज से कुछ साल पहले हमने हमारे पीटर साहब मेरे दोस्त हैं
1: जी।
0: वो उन्होंने इस्लाम में काफी रिसर्च की हुई, कराची बड़ा काम किया, तो मिलकर हमने उस वक्त में मक्की मस्जिद होता था
1: जी।
0: तो हमने शुरू किया, डायलॉग का शुरू किया था
1: जी जी।
0: तो उस हवाले से दोनों तरफ से लोग आते थे, क्रिश्चियन भी, मुसलमान भी और मजहब के लोग भी। तो वो जब उनको ये पता चलता था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने बहुत तारीफ किया, मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ किया, वो हैरान होती थी कि इतना हमें तो पता ही नहीं था कि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है। तो मैं हम ये बताते रहते हैं कि इतना तफसील से जिक्र है और जितनी शान अल्लाह ताला ने कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम की बयान की है तो शायद कहीं भी इतना ना हो। तो ये चूंकि इस्लाम सब सच्चे मजमू को रिप्रेजेंट करता है तो सारे सच्चे नबियों की तारीफ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने की है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो। और खवातीन के हवाले से आप देखें कि मरियम अलैहिस्सलाम का जितना तफसील से जिक्र है कि वो आदमी को हैरान कर देता है, उनकी करामात और उनकी सारी चीजें। वो बचपन में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उनके पास जाते थे जहाँ वो उनकी इबादत की जगह, तो बेमौसम फल उनके पास देखते हैं, कुरान इसको बयान करा है, कोई किस्सा नहीं। तो उन्होंने कहा अल्लाह रखी हाजा, ये कहाँ से आ गया आपके पास
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा हुआ मैं इन दिल्लाशा, ये अल्लाह की तरफ से मेरे पास आते हैं, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। तो ये उनकी करामात कुरान में अल्लाह ने बयान की है। और फरिश्तों का उनके साथ बातें करना, खुशखबरी देना कि अल्लाह तुम्हें बेटा देंगे और सारी चीजें। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के हवाले से कुरान इतनी तफसील से बात करता है कि उनको अल्लाह ख्वाब में बताते हैं कि ये करना उनको बचाने के लिए, पूरी तफसील इसकी मौजूद है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आपको तसल्ली देना, और वलका बिन नौफल जो अहले किताब के आलिम थे उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाना। के तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया वही के हवाले से तो उन्होंने कहा ये वही चीज है कि जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी थी। और कहते उन्होंने कहा कि काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब तो आपकी कौम आपके मुखालिफ खड़ी होगी और मैं आपका साथ देता। पूरे निशानियों से वो समझ गए थे और यहाँ खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत तसल्ली दी, बहुत साथ दिया और हमेशा आप साथ खड़ी रही। तो ये जितना इस्लाम फैलने में ख्वातीन का बहुत आम किरदार है, बड़ा किरदार है, और इसमें जो है हमेशा उनके अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम उनको दिया है इसमें, और इसमें अजर भी सबके लिए अल्लाह ने रखा है और उनके लिए भी बहुत अजर रखा है।
1: बेशक बेशक बहुत अच्छा रखे मौलाना साहब। एक दूसरी यकीनन आपने कहा कि दूसरे टॉपिक्स पे भी यहाँ पर स्पीचेस होंगी, पेरेंटिंग जो है ये ख़ास तौर पर बिल्कुल ये दोनों यानी कि माँ और बाप दोनों का ही किरदार इसमें अहम होता है, लेकिन जो माँ है वो उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी वो माँ जो है वो बच्चे के साथ वक्त ज़्यादा गुजारती है, बच्चे की उसकी नशोनुमा में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है और वो बच्चे जो माँ से कुर्बत भी उनकी ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से जो माँ का रोल है और उस हवाले से यानी कि इस माशरे में जो आज हम अपने बच्चों को तरबियत कर रहे हैं और उनमें ये भी है कि इस सोसाइटी में हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, यहाँ पर हमें यहाँ के लॉज, यहाँ के कवानीन, यहाँ की जो यानी कि इन्वायरमेंट में इसमें हमने किस तरह यानी कि अपने बच्चों को परवरिश करनी है, इस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डाली गई। इस हवाले से यकीन सब्जेक्ट जो है डॉक्टर साहब का है, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस पर यकीन रोशनी डालेंगे
0: जी जी। तो इस हवाले से देखें हम हमारे बच्चे जो है ना, बच्चा जो है ना वो एक बिल्कुल जो उसके दिमाग में आप डालें वो जाएगा
1: बेशक।
0: और सबसे पहले बच्चा हमारे अमल को देखता है, यानी अमली तौर पे अगर हम दीन के पाबंद हैं और कोई दीन का काम मुश्किल नहीं है, मतलब अगर माँ बाप नमाजी हैं तो बच्चे की तबीयत में ये होगा कि वो नमाज पढ़े।
1: बेशक
0: اسی طرح اور زبان

0: राह की मंजिल।
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM. Link FM.
2: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
3: और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
2: दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
4: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: कम्युनिटी की आवाज ये है लिंक एफएम 96.7।

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

हाँ जी, किस तरह का लग्या है गीत? देख लो, इंसान नू जिहड़े दुख हुंदे ना किसे तो मिले हुए, वह भी किस की दा की बना देंदे ने ना। अलताफ हुसैन जी, तुसी साडा फेसबुक ते साथ दे रहे हो। तुसी मैसेज लिखिया है उर्दू विच, माफ करना मैनू उर्दू है, मैं पढ़ नहीं सकती। जो भी लिखिया होवेगा बहुत ही सोहना सोहना लिखिया होवेगा, पर मैं नहीं पढ़ सकती। ते तुहाडा हिस्सा लैण दा पंजाबी विरसा दे विच बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब जी, तुसी भी साडा साथ दे रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस उपर वाला सारिआं नूं ही ठीक रखे। ते जी, मैं तां तुहाडे सामणे हाँ, मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है, उपर वाले दी मेहर है, तुहाडीआं दुआवां मेरे नाल ने, ते मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जी। जेकर तुसी अपनी फरमाइश का कोई गीत सुनना होवे तां साडा स्टूडियो दा नंबर है 01142618181, ते वट्सएप दा नंबर है 07939849339। मैं 7:30 बजे तो बाद एक बुझारत भी तुहाडे कोलों पुछांगी, जिसका तुसी जवाब देना होवेगा, इसलिए तैयार हो जाना। अगला गीत इस गीत की खास करके फरमाइश एक साड़ी भैन ने की है, तो कहते सी कि मेरा नाम ना लेना तुसी। चलो नाम नहीं लेंदे जी, गुमनाम जी। तो चलो गीत सुनते हैं तुहाडी फरमाइश से। तो जी हाँ, सुन रहे हो पंजाबी विरसा लिंक FM 96.7 तो।

0: 96.7.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abed Rahman.
3: My name is Saim Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
13: And the winner is
14: your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abed Rahman.
3: My name is Saim Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
16: 96.7 Link FM.
18: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
19: हर धड़कन की आवाज है Link FM. मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है Link FM. दिल से आपके साथ Link FM.

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM. This is Link FM.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Would you like to gain experience whilst building up your CV? LinkFM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261 8182.
2: जहां हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है LinkFM।
0: दिल से आपके साथ
3: LinkFM Sheffield।

0: क्या आपको ये जी का कबूल है?
1: जी कबूल है।
2: जी कबूल है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक।
1: अब कैसे जाया जाएगा मुझसे? मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करोगी?
2: जी।

0: तू सब का है खुदा, तू सुन मेरी दुआ। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishfaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
13: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Link FM, your number one community radio station.
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम,
3: सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

100 अंधेरों में भी रोशन हो, उस हकीकत की तलाश है। तेरी दहलीज पे छोड़ाए उस मोहब्बत की तलाश है। झुकने की इबादत को तो समझे जहां वाले, कटने पे जो हासिल हो उस जन्नत की तलाश है।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: Assalamu alaikum, main hoon Farooq Rashid.
18: मैं औरंगजेब चौधरी.
19: मैं असलम भुट्टा.
20: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से.
21: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है.
22: मेरा नाम अहमद असगर है.
23: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ.
24: मेरा नाम अंजुम अफताब है.
25: मेरा नाम इमराना है. कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7.